0: 冇諗過一個咁大師級嘅人都會咁樣同我哋 on floor 咁樣去做一啲 exercise 啊，或者跑跑跳跳，我哋覺得都幾激動嘅。但係一去到 APA， 經過咗嗰個面試嘅過程，我就都幾肯定，我係想要啦。
1: 我的香港故事，星期日凤凰卫视中文台。
2: 中方再次要求美方要恪守。
1: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。舞台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。
3: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
1: 是视角还是死角？为智慧辨真相，
3: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
1: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。
4: 霍尔木兹海峡僵局进入第四个月。危机的涟漪已从波斯湾扩散至全球各个角落。
5: आम लोगों के लिए तो एक एक रुपये की भी बहुत बड़ी वैल्यू है सर। कैसे कैसे आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर कैसे कैसे वो करता है, अब गवर्नमेंट ये चीज देख नहीं रही है।
6: あの薬剤師の友達が、あの薬の容器ないって言ってました。あとは歯医者の友達も手袋ないって、そういう感じですね。やっぱあちこち不足してるみたいです。
7: หยุดตอนนี้ก็ประมาณ 80-90% ที่ยังไม่ได้ทำนะครับปีนี้มันต้นทุนมันสูงจริงแล้วมันไปไม่ไหว
8: We raised alarm that should the crisis continue and the price of energy remain or the price of oil remain over $100 a barrel until July some 45 million people will be pushed into hunger
9: We may be fishing one or two less days a week we're letting the lobsterscrawl into the traps a little bit longer, let the bait fish longer, and a few less trips a week equals less fuel burn.
10: No, no sé qué voy a hacer. No, no sé realmente, porque los pasajes, las demás líneas están muy caros ahora. Y bueno, yo viajo a rato. Voy a tener que dejar de dar algunos viajes porque realmente la economía no da para nada.
11: 油价上涨呢，会进一步推高所有的这个下游产业啊，包括冶炼产业呀、啊，包括化工产业啊，包括这个甚至比如说这个化肥产业，一系列的价格上涨。那价格上涨又会推高很多的这个基础领域，比如运输领域、交通领域、农业领域，它的货物都会上涨，它整个造成一个通胀。
12: Implications of the current crisis is not even and same for different regions because every region has its own unique feature. How the current crisis impacts their country is actually dependent on their economic and societal and even political structure of them.
4: 面对潜在的民生危机，各国政府启动了不同的应对方案。
13: हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें।
14: I can announce today that we're giving our hauliers a 12-month road tax holiday, helping to keep prices down. And we're backing drivers by extending the freeze in fuel duty for the rest of the year.
15: We will now have a government-owned fuel reserve of around a billion.